0: बिमाको लाभ दिए आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आजै बनौ सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको बिमा अभिकर्ता सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जियौ
1: बैंकिङ खैमत बिली चौधरी एटीएम मोबाइल दे इन्टरनेट बैंकिङ गोप्य विवरण आरी खई बिले तुई माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषया न्यो कल पर्जिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर्जिमो न्यो तने सतर्क तना ठगदिर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।

0: ए चमेजो लोटी पर्दिउ छाम्ताई गुदी
1: बर्दी आ बर्दी बल लोटी खले पर्दिम बा सैली मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर खनै बने खै बिसा खैमै विश्वास आनन फोनै खले पनि आफै विवरण खैमै आपिन खबै बने वित्तीय संस्थै के पासवर्ड पिन खैमै आरि सुमी बैंक आफै बने आरि
2: सतर कतन छजिस के पर्दैन
0: सिद्धार्थ बैंक र क्यारे जन हेदरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई